0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

Jay.

0: का स्वागत।
1: सक्सेस की बात की थी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों, इट हैपेंस में, और उसके बाद मैंने खूबसूरत गाना भी सुना। सक्सेसफुल इंसान की बात करूं, अगर सक्सेस की बात तो कर ली, लेकिन सक्सेसफुल इंसान की बात करूं तो क्या लगता है आपको, इस दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन या इंसान आप किसे मानते हैं, कौन है वो जो लाइफ में कभी गिरा नहीं, जिसने कभी फेलियर्स का सामना नहीं किया, जिसको डायरेक्ट कम उम्र में सक्सेस मिल गई, उसे कहेंगे आप सक्सेसफुल इंसान? भाई मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि वो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल है जिसने फेलियर्स का सामना भी किया है और जो नीचे भी गिरा है, लेकिन जो गिर के उठना जानता है, गिर के गिरे रहना नहीं जानता, अपनी जिंदगी को कोसना नहीं जानता, भगवान को कोसना नहीं जानता, अपनी किस्मत को कोसना नहीं जानता, बल्कि उसे अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने हार्डवर्क और अपने पैशन पर भरोसा है, वो है एक सक्सेसफुल इंसान। वे मेरे लिए तो ये डेफिनेशन है। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक सक्सेसफुल पर्सन कौन है, मुझे बताइए नीजी ब्रिस्वानी के हमारे फेसबुक पेज पर। और चलिए आपके लिए प्ले करती हूँ अभी ये अगला ट्रैक, इसे इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए जरूर कौन है सक्सेसफुल आपकी नज़र में। Keep listening to Radio Brahmani.

0: दोस्तों, जिंदगी में हमें कई बार समझाने वाला नहीं, समझने वाला चाहिए होता है। हम चाहते हैं हमारे दिल में जो चल रहा है वो हम किसी से बांट सकें, लेकिन पता है हमारे आसपास के लोगों की आदत क्या होती है? इनफैक्ट किसी और की जिंदगी की बात हो तो हमारी भी आदत क्या होती है, हम उसे समझाने पहुंच जाते हैं। यार तुमने यहां पर गलती कर दी, यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मुझे तो पता था, मुझसे पूछ लेती तो लाइन ही खराब है। ऐसी बहुत सारी बातें उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस पर थोपते हैं या लोग भी आप पर थोपते हैं जब आप जिंदगी के टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं या जिंदगी में कुछ स्ट्रगल चल रहा होता है या कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। देखिए, कहते हैं ना कि जिस पर पड़ती है वही समझ सकता है। वो बंदा जो है वो आपसे समझने नहीं बैठा है, वो ये चाहता है कि आप उसे समझें, आप कुछ देर उसके साथ बैठकर उसके दिल की बात सुने, उसके दिल में क्या है ये जाने, है ना? तो हमेशा समझाने मत पहुंच जाइए, कभी कभी समझने की भी कोशिश कीजिए। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी पर, आप सताक्षी के साथ और सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। भाई कहते हैं और ये सही भी है कि सबकी लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त आता है। भाई इस दुनिया में कोई भी ऐसा तो नहीं है ना जिसकी लाइफ में सिर्फ अच्छा ही टाइम चलता रहे या सिर्फ बुरा ही वक्त रहे, ऐसा तो नहीं है। हम सबकी जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों वक्त आता है। अब क्योंकि जिंदगी में वक्त एक साइकिल है इसलिए ये चलता भी रहता है, यानी ना तो अच्छा वक्त बहुत दिन टिकता है और ना ही बुरा वक्त बहुत दिन टिकता है। तो अच्छा वक्त तो सबके लिए बढ़िया है, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त हो, बुरा टाइम हो, तो चीज़ों को कभी कभी वैसे ही छोड़ दीजिए। अच्छे वक्त में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है ज़िंदगी में, लेकिन बुरे वक्त में चीज़ें जरा गड़बड़ होती हैं। आप संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता है, चीज़ें आपके हाथ से निकल रही होती हैं, कई मौके आपके हाथ से निकल रहे होते हैं और आप उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, संभालने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब आप ये रियलाइज़ कर लें कि भाई चीज़ें नहीं संभल रही हैं, तो उन्हें कुछ वक्त के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, याद रखिए, विश्वास रखिए कि वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा, बस आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा जब तक वक्त खराब है। ये साइकिल है, रुक कर नहीं रह सकता, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, यही साइकिल है, लाइफ साइकिल है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। और चलिए, इतनी खूबसूरत सी बात है हमारे वक्त पर, तो वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं भाई और इस अगले ट्रैक को एंजॉय करते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो प्रसवानी 107.0 एम पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। कई बारी आप जिंदगी में इस बात को सोचकर परेशान होते हैं ना कि यार मेरी वैल्यू नहीं है इस जॉब में, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरा बॉस, मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझे वो पोजिशन नहीं देता, मुझे उस लायक नहीं समझता। वो तो समझता है कि मैं बुद्धू है ना, वो तो समझता है कि मेरे से काम बस ऐसे ही हो जाता है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता हूँ। कई बार ऐसी बातें सोचते हैं ना। देखिए ऐसा है कि सही इंसान की वैल्यू जो है वो सही जगह पर ही होती है। और अगर आपको वाकई ये लग रहा है कि जिस जगह पर भी आज आप हैं वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है या कोई आपकी कद्र नहीं करता है या कोई आपको समझता नहीं है, तो बेटर है वक्त रहते उस जगह को चेंज कर दें। जी हाँ, आप समझ जाएं कि वो जगह आपके लिए है ही नहीं और अपने लिए इमीडिएटली कोई नई जगह ढूंढना शुरू कर दीजिए जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ लोग आपको समझें, राइट? क्योंकि अगर आप काम ही करते रहेंगे और कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो यार धक्का तो लगता है, बुरा तो लगता है, राइट? इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक नई जॉब में स्विच कर लें या नए काम में स्विच कर लें, या आप अगर किसी के साथ दोस्ती में हैं तो आप है ना अपना रास्ता बदल लें, थोड़ा सा रिजर्व्ड हो जाएं। आप कैसे भी करके जहाँ पर जिस जगह पर जिस इंसान के साथ आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है उस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस और चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आपको सुनवाते हैं ये अगला ट्रैक।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

भैया, आई होप कि आप सबके पास एक बेहतरीन गाड़ी है। हाँ, मुझे पता है कि आप इतने पैशनेट हैं कि ज़िंदगी में गाड़ी तो ले ही चुके हैं, है ना? मतलब अब तो आपके लिए छोटी मोटी चीज़ हो गई। तो भाई, अगर गाड़ी है तो आप एक बात से तो ज़रूर अग्री करेंगे कि गाड़ी में वाइपर्स हैं आपकी। अब उन वाइपर्स का काम क्या है? जाहिर सी बात है, आपके फ्रंट मिरर पे, आपकी गाड़ी के शीशे पे जो धूल मिट्टी है उसे हटाना, और बारिश हो रही है तो बारिश के पानी को हटाना ताकि आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखाई दे सके। ऐसा ही होता है ना? हाँ, ऐसे ही हमारी और आपकी लाइफ में कुछ लोग भी होते हैं जो हमें ज़िंदगी की क्लियरिटी दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। और एक टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि उनमें से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं ऑटोमेटिक, और हमें लगता है कि यार, ये बंदा जो है, क्या मुझे सिर्फ सही रास्ता दिखाने आया था? जी हाँ, बिल्कुल, वो बंदा जो है वो आपको सिर्फ सही रास्ता दिखाने, आपको लाइफ की क्लियरिटी दिखाने, या कभी कभी लोगों का सच दिखाने के लिए आपके साथ जुड़ता है। ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं, आप समझते हैं कि वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको लाइफ का वे, लाइफ का रास्ता, सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपके रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कीजिए, उन्हें समझिए। अदरवाइज अगर आज आप उन्हें नहीं समझेंगे तो आप अपनी ही लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। क्या समझे? उन्हें जरूर समझिए। और चलिए, ऐसे ही हमारी जिंदगी के लोगों के नाम एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM। सदाशी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस का सफ़र। आई होप कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैंने बहुत ही खूबसूरत गानों को आज की मॉर्निंग के लिए सेलेक्ट किया था। कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की बातें जो हैं वो बस दिल किया कि आपके स्ट्रगल पर, आपके एम पर, आपके गोल पर आज की बातें की जाएँ। तो सारी की सारी बातें बस वही चुनी मैंने। कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन आप बताएंगे कहाँ? हमारे रेडियो प्रसारणी के फेसबुक पेज से जुड़िए, जहाँ आप हमें बता सकते हैं कि आपको इट हैपेंस कैसा लग रहा है। राइट, सो चलिए अभी मुझे इजाजत दीजिए। इस वादे के साथ जा रही हूँ कि बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे। इनफैक्ट कल सुबह मिलें क्या? तो चलिए, आपकी ख्वाहिश सराखों पे कल सुबह एक बार फिर से करते हैं आपसे मुलाकात रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, आप ही के ब्रेकफास्ट इट हैपेंस में। और जब तक मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक यूं ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ग्रेट डे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.01 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से पड़े हुए। देखो वड्डे वड्डे एक्टर्स ते सेलिब्रिटीज ने ना एक समय ते दे बाद खुद नू नवा लुक देण दे लई। फिर तो बहुत बहुत स्वागत है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी आनु जी वेलकम बैक। इस पर फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोने वन सर वन एम जी आर चे संदेश अलग दिन आप बने हुए। देखो एक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान दे ड्रास्टिक वेट लॉस दिया तस्वीर ते वीडियो ना सोशल मीडिया ते वायरल हो गया ने। पहला जिथे काफी बल्की ते मस्कुलर लुक विच नजर आते सी उथे हुण सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक ले लिया हैगा ते मसल्स भी काफी लूज हो गए ने। हालांकि सोहेल खान दे इस नवे लुक ते तारीफा घट ते उन्हां नूं ट्रोलिंग ज्यादा चलनी पई हैगी है। सोहेल खान दा जदों अलायंस विच आए ना शो दे विच तां उस तों बाद इक तम बहुत ज्यादा सुक गए तो कंपैरिजन वीडियोस बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ते छा गए कि पहला की सी ते हुण की बन गए हैगे ने। तां उस तों बाद उन्हां नूं काफी ज्यादा ट्रोल किया गया जिवें तुहानूं पहला दस्सिया सी ना कि बहुत सारे एक्टर्स हैगे ने। तां उसी तरह दे नाल सोहेल खान कल्ले एक्टर नहीं हैगे जिन्हां ने वजन घट करके ट्रोलिंग जिन्हां ने चली हैगी है बहुत सारे हैगे ने। उन्हां बारे दस्सदे आं तुहानूं एक एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय

0: जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम से जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। अगला जिहड़ा नाम हैगा वो है राम कपूर का। टीवी की दुनिया विच कामयाबी दे झंडे गड्डण दे नाल नाल राम कपूर ने फिल्मां विच भी खूब नाम कमाया हैगा। राम कपूर ने हालांकि इस पूरे समय के दौरान अपना बॉडी वेट लगभग सेम रखा। उन्हें दी पहचान इसे लुक दे नाल बन चुकी सी, पर अचानक जद उन्होंने वजन घटाया तो उन्होंने वजन तो घट गया, नाल ही चेहरा भी काफी अलग दिखन लग पिया। लोग उन्होंने इस नवे लुक दे नाल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ते काफी ज्यादा ट्रोल किया। हाल फिलहाल दे विच लॉकअप 2 दे विच नजर आए सी जिथे उन्होंने काफी ज्यादा प्यार मिलिया।
1: एक दो गल्ला करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखी।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द
1: क्वींसलैंड गवर्नमेंट। क्या शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपरवर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003
0: इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो। अगला नाम है जी करण जौहर का। बॉलीवुड की दुनिया वेद का एक अजिहा नाम जिन्होंने ना सिर्फ सानू बहुत सारिया यादगार फिल्मा दित्तियां बल्कि हिंदी सिनेमा नूं कितों तो कितों पहुंचाया। करण जौहर नूं असीं शुरू तो एक खास लुक कैरी करते देखा है, पर फिर जब उन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा घटाया ना तो उन्होंने ओजिम्स से मुंजारो वर्गे ड्रग्स लैण का आरोप लग्या। करण जौहर फंकी लुक के बहुत पतले दुबले लुक दे लई काफी ज्यादा ट्रोल हुए। खैर करण जौहर ट्रोल अक्सर होंदे रहिंदे ने पर लुक नूं लैके पहली बारी हुए सी।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते चार छह संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राजकुमार राव दा। था बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव नू भी वार बार वजन घटाउण ते वधाउण दी वजह नाल ट्रोलिंग चलनी पई सी। वजह यह है कि राजकुमार राव दी कद काठी उन्नी विशाल नहीं हैगी, मतलब इन्नी वड्डी नहीं हैगी कि वह इस तरह के ट्रांजेक्शन नू तो बाद भी नॉर्मल लगन। जद उन्होंने वजन कुछ फिल्मों के लिए घटाया तो काफी दुबले लगन लगे, फिर जद वधाया तो काफी मस्कुलर ते हैवी दिखन लगे। यही वजह है कि राजकुमार राव भी वेट लॉस के लिए ट्रोलिंग चल चुके हैं।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: Ke alam mein nasha ho jab tere ruksaar dekhu, khuda ne jab tarasha hoga wo asrar dekhu. निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: वाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302288009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 41009। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ड ऑन ट्रस्ट।
5: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just an
10: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनवीर फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और सबसे पहले आपको हैप्पी मंडे मेरी तरफ से और रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से। ऑफकोर्स आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा हैप्पी मंडे, आर यू सीरियस? ये भी कोई कहने की बात होती है? मतलब ठीक है कि तुम हमें चीयर करना चाहती हो, तुम हमें मोटिवेट करना चाहती हो, बट स्टिल हैप्पी मंडे, आर यू सीरियस? आर यू फॉर रियल? आई नो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, बट डोंट वरी, आपको स्ट्रेस मुक्त और मंडे ब्लूज कम करने के लिए आपके हम यहाँ पर आ गए हैं। ऑफकोर्स आपके लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हम लाए हैं, ऑफकोर्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं, बहुत ही मजेदार से गाने आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत कुछ लाए हैं। सो आइए सबसे पहले थोड़ा सा छलिया बन जाते हैं, क्योंकि ये है बहुत ही जबरदस्त गाना फ्रॉम द मूवी टशन, जो कि जबरदस्त तो है ही, लेकिन ये आपको थोड़ा वैसा भी वाइब लेकर आता है आपके लिए, जैसे यू नो चलिए चलिए चलिए, मतलब एकदम मजेदार सी, फ्लर्टियस सी और वैसे वाली। जी हाँ, तो सुनते हैं इसको और फिर करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, आज तुम डीप ब्रेथ एक्सरसाइज नहीं करने वाली हो? वेल, अगर आप ये सोच रहे थे तो बिल्कुल करने वाले हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज मैं देखती हूँ कि क्या आपको हमेशा हमारे रिचुअल जो हम प्रैक्टिस करते हैं, कि आपको हमेशा से वो याद जो है वो रहता है जो हम हमेशा करते हैं। वेल, अगर आपको नहीं याद था और आप भी सच में ऐसे ही आगे की ओर बढ़ने वाले थे, तो ये गलत बात है, क्योंकि हेल्दी रिचुअल के बिना हमारा प्रोग्राम अधूरा है, खासकर उसकी शुरुआत अधूरी है। तो सबसे पहले वही करेंगे, क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि छलिया फ्रॉम द मूवी टशन आपके लिए, और फिर करेंगे और बहुत सारी बातें।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

जी हाँ दोस्तों, तो 10 बहाने करके ले गए दिल, और इसी के साथ दिल तो ले गए लेकिन अब मौसम क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। आप लोग बोलो कि दिल ले गए मौसम की तरफ चलते हैं, निव्या शर्मा क्या था ये लॉजिक। वेल दिल तो गया वो गया, लेकिन हम अपनी प्लानिंग को तो सही रखें, क्योंकि यहाँ पर मौसम के बिना और मौसम को जाने बिना, वो वेदर की सिचुएशन जाने बिना कोई भी प्लानिंग करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। सो यहाँ पर यही वाली सिचुएशन हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 25.7 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 26 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, वहीं बारिश की सिचुएशन भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 40% चांसेस जो हैं वो बारिश के हैं, और यहां पर मुझे बीच बीच में कुछ इलाकों में बारिश होती हुई नजर आ रही है। आप मुझे बताइए आपके इलाके में बारिश हुई, कितनी हुई, ज्यादा हुई, कम हुई, जरूर बताइएगा। इसी के साथ यहां पर एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। वहीं अगर ट्यूसडे यानी कल की एंड वेडनेसडे की बात की जाए तो 29 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, और 60% चांसेस बारिश के भी हैं। नाउ ये वो वाली बारिश है जो बहुत ज्यादा नहीं होगी, सभी जगह पर नहीं होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी और कुछ जगहों पर जरूर होगी। जी हाँ, वहीं वेडनेसडे की बात की जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 40% चांसेस मुझे बारिश के यहां पर होते हुए दिख रहे हैं। सो ये है मौसम का हाल, जो कि बिल्कुल भी हाल नहीं है, वो चल रहा है अपनी चाल, तो हम भी चलते हैं। और जरा आपको सुनाते हैं एक और मजेदार सा गाना जो कि आपको झूमने पर मजबूर कर देगा।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब एक और बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में और वो है फरमाइशें। फरमाइशें मने आपके पसंदीदा अजीज गाने जो कि आपको बहुत पसंद है और आप हमारे इस प्रोग्राम में रिकमेंड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो और कभी कभी डेडिकेट भी करते हो अपने नियर एंड डियर वंस को। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हमारे इस प्रोग्राम में वो आप सर्व कर सकते हो। सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है, वन वे रोड नहीं है, आपकी तरफ से भी पूरा ट्रैफिक हो सकता है, आपकी तरफ से भी पूरा चलन मलन हो सकता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट +9182888717701। तो बस ये वाला नंबर डायल कीजिए, भेज दीजिए हमें अपना रिकमेंडेड सॉन्ग और हमें है इंतजार। और तब तक मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ एक और बहुत ही मजेदार सा गाना। ना ये गाना ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी मूवी का है, बहुत ही पुरानी मूवी का, और 2004 में ये मूवी आई थी। इसका नाम है मर्डर और इस मूवी को स्पेशल बनाते हैं इसके गाने। वाले ऑफकोर्स कुछ लोगों को इसकी कहानी भी पसंद आती है और वो केमिस्ट्री भी पसंद आती है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर गोना टॉक अबाउट द सॉन्ग जो कि लिटरली एवरग्रीन है। नाउ ये सॉन्ग जब भी आप सुनते हो आपके दिल में एक कशिश सी जाग जाती है। क्यों मैं ये कह रही हूँ सुनिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, आरसी के साथ एक बड़ी ही गजब की चीज इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जी हाँ, ऑल्दो ये बहुत नया किस्सा नहीं है, कुछ वक्त पहले का है, लेकिन ये किस्सा बहुत जबरदस्त था इसीलिए ये फिर से वायरल हो रहा है। जी हाँ, सो किस्सा कुछ ऐसा है कि एक एम्प्लॉय जीतता है अपनी कंपनी के एनुअल डिनर में एक लकी ड्रॉ। आप लोग भूलोगे लकी ड्रॉ जीतता है, ओके, कितने पैसे? 365 डेज पेड लीव जीती, मतलब वो 365 डेज तक मस्ती कर सकता है, मौज कर सकता है, कहीं भी जा सकता है और उसे पूरा का पूरा साल कंपनी फुल ऑन पे करने वाली है जैसे कि वो काम कर रहा है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं कौन सी कंपनी है, कहाँ पर है ये, कहाँ होते हैं ऐसे लोग, कौन देता है ऐसे काम? जी हाँ, आई नो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एम्प्लॉय है शेंजेन चाइना का। ऑफ कोर्स जो कहीं नहीं हुआ वो चाइना में हुआ और चाइना की ही ये बात है जहां पर एक इम्पोर्टेड फूड कंपनी जो है उसके एनुअल डिनर के दौरान एक लकी ड्रॉ जो है वो निकाला गया। उसके अलावा भी कुछ प्राइजेस थे, लेकिन वो जो लकी ड्रॉ था, जो उसका पहला प्राइज था, जो फर्स्ट प्राइज था, वो ये था कि जिस भी व्यक्ति का वो निकलेगा उसको 365 डेज पेड लीव मिलने वाली है। और वो व्यक्ति वो जीत गया। जब उसने वो देखा, ही इज लाइक ओ, पैसा तो मिलेगा ही, मौज भी मिलेगी। मतलब ठीक है, कंपनीज आपको पैसा दे देती हैं लकी ड्रॉ में, वो एक चीज है, लेकिन आपको पैसा भी मिल रहा है, लेकिन आपको मौज भी करने का मौका मिल रहा है, मतलब आपको वक्त भी मिल रहा है मस्ती करने का, वो नहीं करती कंपनीज। लेकिन यहां इस कंपनी ने वो भी करके दिखा दिया, लाइक लिटरली 1 in 1,000 odds जो है वो literally ऐसा कुछ देखने को मिलता है और यहां पर इस व्यक्ति को वही मिला। And that person was so happy कि वो उल्टी छलांग मारने वाला था। अब आप लोग बोलोगे उल्टी छलांग मारने की क्या जरूरत है? Well, आपको नहीं पता, पर कुछ इंडियंस जो है ये कहावत मारते हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं उल्टी छलांग मार दूं। जी हाँ, of course it's a backflip they are talking about, कि खुशी इतनी हो गई है, ऐसी कोई गजब की चीज हो गई है जिंदगी में कि backflip मार दी जाए। Already मतलब it's a metaphoric situation, it's not the real situation. So yeah, 365 days paid leave, कौन सी कंपनी देगी? वेल, चाइना की कंपनी तो दे रही है, कि आपकी कंपनी आपको देगी? आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा वैसे ही मंडे है, तुम जख्मों पे मरहम तो डाल नहीं रही हो लेकिन नमक तो मत छिड़को। चलिए ठीक है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू दिस गाय जिसको भी ये मिला है, और मजे तो ये कर ही रहा होगा, इतनी तो पक्की बात है। हम लोगों को ऐसे मजे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो दूसरी बात है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਓਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
3: ਥੈਂਕਸ ਟਨ ਵੀਰੇ, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM। शो चल रहा है वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत ही दिलचस्प चीज हुई कुछ दिन पहले। जी हाँ, पिछले हफ्ते एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। एक ऐसी स्टोरी जो कि पूरे के पूरे इंटरनेट को अपने साथ तूफान की तरह ले गई। जी हाँ, और वो बहुत ही अच्छी चीज थी। मतलब इट वॉजंट इन अ बैड वे, बट इट वॉज इन अ गुड वे। जी हाँ, सो आपने बहुत सारे मटर्निटी फोटोशूट्स को देखा होगा, बिकॉज मटर्निटी फोटोशूट पिछले कुछ वक्त से एक बहुत ही ट्रेंडी चीज बन गई है. मतलब व्हेनेवर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग, जब भी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने बेबीज को, तो वो इस मटर्निटी फोटोशूट को करवाते हैं. जी हाँ, वो प्रेगनेंसी फोटोशूट जो है वो करवाते हैं, उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, उस जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं जो एक टाइनी टीनी ह्यूमन बीइंग को इस दुनिया में लाने का सफर है. नाउ इंसान इस चीज को करते आए हैं हमेशा से, लेकिन क्या आपने किसी एनिमल को ये करते हुए देखा है? जी हाँ, या दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो एक बहुत ही प्यारी सी डॉगी, जी हाँ, उसके मटर्निटी फोटोशूट ने लिटरली बवाल मचा दिया पूरे के पूरे इंटरनेट पे. जी हाँ, आपने इंसानों को मटर्निटी फोटोशूट करवाते हुए देखा था लेकिन डॉग्स को नहीं. लेकिन यहाँ पर वो क्यूट सी डॉग जो कि पहली बार मॉम बन रही है अपेरेंटली, उनके लिए उनके घर वालों ने ये मटर्निटी फोटोशूट ऑर्गेनाइज किया और वो इतना प्यारा निकल कर आया है कि everyone was talking about that shoot. Now, ये इतना heartwarming है, people were like, you know, this is the best thing that we saw on internet today. And ऐसे ही warm comments जो हैं, वो उस post पर आए, and literally, जैसे मैंने कहा कि literally everyone was talking about it. उसे बहुत ही खूबसूरत से pink flowers में जो है वो रखा हुआ था, बहुत ही प्यारे प्यारे props उसके लिए use किए गए थे, और वैसे ही poses उससे मरवाए गए थे, वैसे ही poses उससे करवाए गए थे, जैसे कि कोई ह्यूमन मॉम करती है जब उसका बेबी होने वाला होता है. सो लिटरली इट वॉज द बेस्ट थिंग. आप मुझे बताइए कि आपने उसे देखा. जी हाँ, सो ये है फोटोज फोटोग्राफर कैटलिन सेनमैन की, जिन्होंने अपनी डॉग जैक रसल क्लोए को ये खूबसूरत सा शूट जो है वो दिया, जहां पर लिटरली पिंक बैकड्रॉप्स के साथ, स्टार्स के साथ, रिबन्स के साथ क्लोए जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी. और ये अडोरेबल फोटोशूट जो है वो लिटरली इंटरनेट पर वायरल हो गया. अब मैं ऐसे कहूंगी कि या मतलब आई थिंक जो कमेंट था कि दिस इज द बेस्ट थिंग वी सॉ ऑन इंटरनेट टुडे, दैट वाज द बेस्ट कमेंट, बिकॉज लेट्स बी रियल, मतलब वो इतना हार्ट वार्मिंग था. दुनिया में इतना कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वहां पे आप देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो अपने डॉग्स की प्रेगनेंसी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो भी इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, और उसको मेमोरीज बनाने में लगे हुए हैं. राइट, दुनिया में कुछ तो खूबसूरत अभी भी है. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है.

यस यू गाइस आर माय लव एंड इसी के साथ बिना देर किए यहाँ पर एक फरमाइश हमें प्ले करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बारे में हमें कह दिया गया है कि आप जल्दी से प्ले कर दीजिए क्योंकि हम सोने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही है मेरे लिसनर्स जो है वो दुनिया भर से हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम है उन जगहों पर, हमारे टाइम के हिसाब से वो नहीं है। बट द थिंग इज कि मेरे लिसनर्स इतने ज्यादा लॉयल हैं कि जहां भी हो, जिस भी वक्त हो, वो सुनते जरूर है हमारे प्रोग्राम को एंड आई लव इट। सो ये जो खूबसूरत फरमाइश आई है वो आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से, ऑल द वे फ्रॉम शिकागो। जी हाँ, एंड यहां पर जो गाना उन्होंने फरमाइश किया है वो है लो प्यार की हो गई जीत, बलम हम तेरे हो गए। जी हाँ, जादू का मूवी का ये गाना है, 1951 में ये मूवी आई थी, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा पुराना। बट देन अगेन मेरे लिसनर्स कुछ ऐसे ऐसे मास्टर पीसेस रिकमेंड कर चुके हैं आज दिन तक जो कि लिटरली हमारी प्लेलिस्ट का पार्ट बन गए। सो थैंक यू सो मच अमला जी हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए एंड अपनी नींद को त्याग कर हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए। लिटरली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका इसके लिए। एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिए। और ये रहा आपका खूबसूरत सा गाना बिना देर किए हुए।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको

0: फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन AU.LotusFX.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इस दुनिया में ना बहुत कुछ दिलचस्प जो है वो चलता रहता है। खासकर ये जो बिलियनर्स होते हैं ना, ये बड़ी दिलचस्प चीजें करते हैं। जी हाँ, ऑफकोर्स पॉलिटिशियंस जो है वो इनसे भी ऊपर है, और उनसे ज्यादा दिलचस्प चीजें इन अ बैड वे कोई नहीं करता, इन अ कॉमिक वे कोई नहीं करता, बट बिलियनर कम्स एट क्लोज सेकेंड। जी हाँ, नाउ कुछ दिन पहले ओपन AI ने डॉट्स लॉन्च किया। जी हाँ, उन्होंने डॉट्स को लॉन्च किया, लेकिन एलन मस्क ने उन्हें मॉक करने के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज कर दी, और उन्होंने बता दिया कि क्यों, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों खर्च ना करूं, क्यों मैं लोगों की टांग नहीं खींचू। जी हाँ, ये तो लिटरली उन्होंने इसीलिए किया। सो बेसिकली ओपन AI लॉन्च करता है अपना नया मॉडल डॉट्स, और वहां पर एलन मस्क जो है वो एक URL जो है वो ले लेते हैं, और वो URL और कुछ नहीं बल्कि dots.com है। जी हाँ, सो बेसिकली उन्होंने सैम ऑल्टमैन को मॉक करने के लिए .com जो है ले लिया, .com जो है वो उन्होंने खरीद लिया। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस के लिए, जो आप कर रहे हो, जो आपका नाम हो वैसा ही आपका URL हो, वैसा ही आपका जो है वो वेबसाइट का एड्रेस हो, वो वैसा ही हो तो ही बेटर रहता है। और इसके लिए बड़े बड़े लोग जो है वो डिफरेंट चीजें करते हैं ताकि वही उनको पर्टिकुलर नाम जो है वो मिल जाए। अब यहां पर सैम ऑल्टमैन को मॉक करने के लिए, ऑल्दो सैम ऑल्टमैन इज नॉट अ गरीब पर्सन, ही इज ऑल्सो अ वेरी रिच पर्सन, बट एज कम्पेयर टू एलन मस्क जो कि लिटरली डिफरेंट भांति भांति की चीजें करते रहते हैं, अब उन्होंने सैम ऑल्टमैन को मॉक करने के लिए .com खरीद लिया। मीनवाइल .cards जो है, मतलब ये ऑलरेडी एक नाम है और ये ऑलरेडी एक एड्रेस है, और ये पहले ही ले चुका है .cards, जो कि 2022 से लिटरली उनका ट्रेडमार्क है, और वो वेरिएबल स्मार्ट बिजनेस कार्ड्स जो है वो बनाते हैं और उसके लिए वो फेमस है। सो बेसिकली डॉट करता है, मतलब सैम ऑल्टमैन जो है वो डॉट निकालते हैं, एलन मस्क जो है .com को खरीद लेते हैं, ताकि तुम जो है कुछ भी करो, मैं तुम्हारा जो है वो आंगन ही खरीद लूंगा तो तुम क्या कर लोगे। जी हाँ, और वहीं एलन मस्क से पहले ही कोई ये कर चुका है। सो सैम ऑल्टमैन को डॉट्स की जगह कुछ और सोचना चाहिए था, बट लिटरली अगर आपके पास पैसा हो तो आप मोक करने का तरीका भी पैसों वाला चुन सकते हो, एंड ये एलन मस्क ने यहां पर दिखाया हुआ है लिटरली कि भाई सैम ऑल्टमैन तुम कितना भी कुछ कर लो, मैं बहुत ज्यादा रिच हूं और मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूं। अगर तुम डॉट निकालोगे तो मैं डॉट कॉम खरीद लूंगा, लाइक लिटरली, मतलब क्या क्या क्या चल क्या रहा है। बट या इट्स एलन मस्क वे ऑफ टेलिंग पीपल दैट ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ एंड देर इज नो बडी, लिटरली नो बडी हु कैन टच हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त है।

दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ हो गया है और हमें इसके बारे में बात करनी होगी। जी हाँ, मतलब हम कैसे पीछे रह सकते हैं आपको अपडेटेड रखने में। तो सबसे पहले शुरुआत होगी अमेरिका से, क्योंकि वहां से कुछ अच्छी खबर। अमेरिकी तट के पास विमान लापता हो गया है और वहां पर सभी के सभी 6 यात्रियों की मौत की आशंका है। जी हाँ, अमेरिका के मैसाचुसेट्स तट के पास एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट विमान शनिवार को लापता हो गया। बरमूडा से बोस्टन जा रहे इस विमान में सवार 6 लोगों के अब जिंदा नहीं होने की आशंका जताई गई है। विमान का संचालन करने वाली कंपनी लैटिट्यूड एयर एम्बुलेंस ने रविवार को इसकी पुष्टि की। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि अब हमें इस दुखद सच्चाई का सामना करना होगा कि हमारी लैटिट्यूड टीम के 4 सदस्य, हमारे मरीज और मरीज के साथ जा रहे परिवार के सदस्य जो हार्टबीट 104 में सवार थे, उनके मारे जाने की आशंका है। अमेरिकी तट रक्षक बल ने रविवार शाम मैसाचुसेट्स के नैनटकेट द्वीप के तट के पास विमान में सवार लोगों की तलाश का अभियान खत्म कर दिया। इससे पहले शनिवार शाम अधिकारियों को समुद्र में विमान का मलबा मिला था, जिसकी पहचान लापता विमान के मलबे के रूप में की गई थी। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट अवेयर और आंकड़ों के अनुसार विमान ने शुक्रवार रात बरमूडा के LF वेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्थानीय समय अनुसार जो है वो उड़ान भरी थी। विमान को शनिवार रात करीब 1:30 बजे बोस्टन के लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था। हालांकि शनिवार तड़के करीब 1 बजे अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का विमान से संपर्क टूट गया था और अब वो मरीज और वो जो लोग सवार थे उस फ्लाइट में, उन सबके मारे जाने की आशंका यहां पर है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। तो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार शेनिविया के साथ, खबरों का सिलसिला चल रहा है और यहां पर अब जरा बात करते हैं अगेन अमेरिका की ही, क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ब्रिटेन के एयरबेस से हटाए सारे बॉम्बर विमान, और इससे पहले वो इराक से भी अपनी सेना को हटा चुकी है। किस चीज की तैयारी कर रहा है अमेरिका? वेल, वो शायद हम लोगों को पता है। जब ब्रिटेन के RF फेयरफोर्ड एयरबेस से अमेरिका ने अपने सभी बॉम्बर विमान हटा लिए हैं, ये वही ब्रिटिश सैन्य अड्डा है जहां 27 सितंबर को हुई एक घटना की जांच काउंटर टेरर पुलिस कर रही है। अमेरिकी विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एयरबेस पर तैनात सभी अमेरिकी बॉम्बर विमानों को वापस घरेलू ठिकानों पर भेज दिया है। हालांकि अमेरिका ने विमानों को हटाने के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। अमेरिका का यह फैसला 27 सितंबर की उस घटना के बाद आया जब ग्लास्टशायर स्थित RF फेयरफोर्ड एयरबेस के पास 3 संदिग्ध वाहनों की सूचना मिलने के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया था। घटना के सिलसिले में शुरुआत में 5 लोगों को आतंकवाद से जुड़े अपराधों के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें पुलिस जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद ब्रिटिश ईरानी नागरिक 6 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। वहीं व्हाइट हॉल के स्रोतों ने इस बात से इनकार किया है कि वॉशिंगटन का अपने बॉम्बर विमानों को हटाने का फैसला फेयरफोर्ड एयरबेस की घटना के जवाब में लिया गया है। जी हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि यह उस घटना के जवाब में लिया गया है, बल्कि मुझे यह लगता है कि अमेरिका कुछ और ही तैयारी कर रहा है। वो सैन्य कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है और वो करने की कोशिश भी करने वाला है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। वो ईरान के खिलाफ अब लैंड से, यानी कि धरती से, जमीन से जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने अपने यूरोप से भी काफी सारी जो उन्होंने अपनी मिलिट्री है वहां से उन्होंने हटा ली है, इराक से उन्होंने अपनी मिलिट्री को हटा लिया। वो पूरी तरह से किस जगह पर फोकस करना चाहते हैं, आई थिंक वी ऑल नो। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और वहां पर ब्राजील से भी खबर है क्योंकि वहां पर सरकार चेंज हो सकती है। जी हाँ, ब्राजील में चुनाव हो रहे हैं और दूसरे राउंड में होगा फैसला। दक्षिणपंथी फ्लावियो बोल्सोनारो पहले दौर में जीते। जी हाँ, अब क्या है माजरा, आइए जरा जानते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड में दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो ने मौजूदा राष्ट्रपति वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूला द सिल्वा बोल्सोनारो को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, जिसके चलते राष्ट्रपति चुनाव का फैसला अब दूसरे राउंड में होगा। चुनाव के दूसरे राउंड में फ्लावियो बोल्सोनारो और लूला द सिल्वा के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों उम्मीदवार 25 अक्टूबर को होने वाले मतदान में आमने सामने होंगे। ब्राजील के चुनावी नियमों के मुताबिक पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को वैध मतों का 50% से अधिक नहीं मिलने पर शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे राउंड का चुनाव कराया जाता है। करीब 98.8% मतों की गिनती तक फ्लावियो बोल्सोनारो को लगभग 47.2%, जबकि लूला को करीब 44.9% वोट मिले। फ्लावियो बोल्सोनारो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं। जायर बोल्सोनारो को पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद तख्ता पलट की कोशिश से जुड़े मामले में 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। पहले राउंड के चुनाव से पहले मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा था। चुनाव से ठीक पहले सामने आए कुछ सर्वेक्षणों में लूला को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन मतदान के बाद फ्लावियो बोल्सोनारो पहले स्थान पर रहे। पहले राउंड में कई अन्य उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिनमें दक्षिणपंथी दलों से जुड़े उम्मीदवार शामिल थे। अब दूसरे राउंड में इन उम्मीदवारों को मिले वोट और उनके समर्थकों का रुख चुनावी मुकाबलों में अहम भूमिका निभा सकता है। जीत किसकी होगी वो तो अभी कुछ दिन बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि जो भी जीतेगा उससे ब्राजील की किस्मत कितनी चेंज होती है वो वक्त बताएगा। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त जबरदस्त है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
6: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं. आई एम सो कंफ्यूज्ड.
7: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस. साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
6: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109. फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365. दैट्स 3273-7365. और ईमेल princejewelers@bigpond.com. फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके बारे में शायद आपने पहले से ही गेस कर लिया होगा. मतलब आपको इसका जो अभाव हो वो पहले से ही होगा. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग्स. एंड ऑफकोर्स डॉग्स से रिलेटेड जब भी कुछ होता है ना, मेरा हार्ट एकदम वार्म वार्म वार्म हो जाता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक चीयरफुलनेस जो है मेरी आवाज में आ जाती है, वो प्यारी प्यारी आवाजें मेरा जी करता है निकालने का, जो कि लिटरली मैं डॉग्स को देखकर निकालती हूं. सो आप में से कितने लोगों को डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है? वेल ऑफ कोर्स देयर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको डॉग्स पसंद नहीं है, बिकॉज आई ऑल्सो नो मेनी पीपल जिनको डॉग्स पसंद नहीं है. बट उनसे कहीं ज्यादा तादाद में वो लोग हैं जिनको डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है. सो स्टडीज ने प्रूव कर दिया है एक फैक्ट जिसके बारे में मैं बताने वाली हूं. स्टडीज ने प्रूव कर दिया है कि ह्यूमंस हैव मोर एम्पैथी फॉर डॉग्स देन फॉर अदर पीपल. सो देर आर मेनी पीपल जिनको डॉग्स के साथ जो है वो ज्यादा एम्पथी, दे आर मोर एम्पथेटिक टूवर्ड्स डॉग्स रादर देन ह्यूमंस, रादर देन अदर पीपल. एंड यू आर लाइक, यू नो व्हाट निव्या, ये स्टडीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमें ये पहले से ही पता है. मतलब डॉग्स कितने सेल्फलेस होते हैं, डॉग्स कितने प्यारे होते हैं. आप उन्हें एक बार पुकारोगे वो आपको 100 बार प्यार करेंगे. आप जितनी बार उनसे मिलोगे वो उतनी बार आपको प्यार करेंगे. आप उनको डांटोगे भी वो तब भी आपसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे. लेकिन इंसान ऐसे नहीं है. इंसान तो ऐसे हैं कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को भी कुछ बोलेंगे तो बच्चे भी उल्ट कर जवाब जरूर देंगे. बट डॉग्स आर नॉट लाइक दैट. आई थिंक दैट इज द रीजन ह्यूमंस फील मोर क्लोजर मोर एम्पथेटिक टूवर्ड्स डॉग्स. जी हाँ, एंड ये चीज जो है वो हमें बहुत सारी पहले ही से पता थी. जी हाँ, सो ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है इन द जर्नल सोसाइटी एंड एनिमल में, जहां पर पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है सिमिलर लेवल्स ऑफ डिस्ट्रेस फॉर पपीज अडल्ट डॉग्स एंड ह्यूमन इन्फेंट्स. जी हाँ, वाइल शोइंग लेस एम्पथी टूवर्ड्स एन इंजर्ड अडल्ट ह्यूमन. ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं भैया, यू शुडंट बी दैट क्रूअल, बिकॉज देर वॉज अ पर्सन जो कि बहुत वक्त पहले मुझे मिला था, एंड ही वॉज लाइक यू नो वॉट, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा एम्पथी फील करते हो, बट अगर कोई इंजर्ड इंसान होगा, ह्यूमन होगा, तो उसके लिए आप उतना एम्पथेटिक फील नहीं करते, उसके लिए आपको बुरा फील नहीं होगा. एंड आई वॉज लाइक या बट आई थिंक देर आर मेनी पीपल लाइक मी, एंड या स्टडीज ने ये प्रूव कर दिया है. बट मुझे ऐसा लगता है कि काइंडनेस जो है वो हमें सबको ही दिखानी चाहिए. यहाँ पर मैं फिर भी आपको यही कहूंगी कि या डॉग्स आर वेरी गुड, डॉग्स आर द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड दे आर द मोस्ट सेल्फलेस क्रीचर्स ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड डेफिनेटली यू फील मोर एम्पथेटिक टूवर्ड्स डॉग. बट इफ यू सी एनी इंजर्ड पर्सन और ह्यूमन्स, आई नो ह्यूमन्स आर नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ क्रीचर, बट यू शुड फील एम्पथेटिक टूवर्ड्स देम ऑल्सो. लाइक यू नो देर आर मेनी पीपल जो कि बहुत अच्छे हैं और उनको हेल्प की जरूरत होती है. सो काइंडनेस जो है वो सिर्फ हमें डॉग्स के लिए नहीं दिखानी है, ह्यूमन्स के लिए भी दिखानी है. एंड या जो लोग डॉग्स को पसंद नहीं करते उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको सारी की सारी काइंडनेस सिर्फ ह्यूमन्स के लिए नहीं दिखानी है, डॉग्स के लिए भी दिखानी है. सो मुझे लगता है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए. बट या स्टडीज ने प्रूव कर दिया है कि इंसान ज्यादा करीब ज्यादा एम्पथेटिक डॉग्स के लिए फील करते हैं रादर देन ह्यूमंस. आई गेस दैट टेल्स अस अ लॉट. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

हम आपको ना बताएं, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, ये किस्सा बहुत ही प्यारा सा है, ये वीडियो है बेसिकली, जब एक बहुत ही खूबसूरत सा कपल जो है वो अपनी शादी के जो है वो बंधन में बंध रहा है, वो अपनी वेडिंग वॉल्स को ले रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर जो रिंग बेयरर है, मतलब जो रिंग लेके आने वाला व्यक्ति है, वो रिंग लेने लेकर आने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि एक क्रीचर है। जी हाँ, मतलब आपने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अजीबोगरीब तूफानी चीज़ों के बारे में सुना होगा। Imagine you walk down an aisle and you are ready to get married to the love of your life, and suddenly you are like, okay, where are the rings? And there comes a dinosaur, जो कि आपकी तरफ आ रहा है एकदम हुंकार मारता हुआ, और फिर वो आपकी अंगूठियों को पकड़े हुए आ रहा है, मतलब वो अंगूठियां आपके लिए लेकर आएगा और आप लोगों को देगा, और फिर उसके बाद आप अपनी शादी को कंप्लीट कर पाओगे। आप लोग कहोगे, व्हाट इन द जुरासिक वर्ल्ड इज दिस सिचुएशन? वेल, इट इज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे आपको लगेगा कि जुरासिक वर्ल्ड वाली एरा में आप जो है वो शादी कर रहे हो, और वैसा ही एक कपल ने किया। मतलब आप सोच सकते हो कि एक जो कपल है वो डायनासोर्स को लेकर इतना ज्यादा क्रेजी है कि उसने अपनी जो रिंग्स थी वेडिंग रिंग्स के लिए एक डायनासोर को चुना। वेल, ऑफ कोर्स नॉट द रियल डायनासोर, बिकॉज़ वी डोंट हैव रियल डायनासोर्स एनीमोर, बट एक ऐसा डायनासोर जो कि रियल लग रहा था, और वो वैसे ही हुंकार मार रहा था जैसे डायनासोर्स को आपने पिक्चर्स में, फिल्म्स में देखा है हुंकार मारते हुए। लेकिन द फनी थिंग वॉज, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट एंट्री। जी हाँ, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ एकदम प्यार के बंधन में बंधने के लिए तैयार थे, और वहां से एकदम से हुंकार आती है और लोग सब पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, ओह ये क्या हो गया, सब ठीक है ना, मतलब क्या चल रहा है। और फिर जब वो देखते तो उन्हें दिखता है एक मैसिव डायनासोर, जो कि लिटरली कोई बंदा ही है जो कि डायनासोर का कॉस्ट्यूम पहन के आ रहा है, और वो कर रहा है हूं, और वो रिंग्स भी लेकर आ रहा है, और वो रिंग्स लाता है और वो कपल को देता है, एंड इज लाइक, यू नो व्हाट, कांग्रेचुलेशंस। वेल ऑफ कोर्स, इमेजिन यू लाइक डायनासोर सो मच दैट यू आर मेकिंग देम पार्ट ऑफ योर बिगेस्ट डे, लाइक दैट्स क्रेजी, राइट? इससे पहले हमने बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें देख ली है, लाइक एक जो कपल था उसने श्रेक वाले कॉस्ट्यूम में, श्रेक वाले वेशभूषा में शादी की। इससे पहले एक और व्यक्ति ने अपनी शादी में, अपनी जो आयल है उसमें वॉटर पार्क बना दिया कि बस अब शादी करके सीधा हम स्लाइड डाउन करेंगे पानी में, उसके बाद मजे करेंगे। दिस इज लाइफ, दिस इज वॉट वेडिंग शुड फील लाइक। बट यहां पर डायनासोर आपकी अंगूठियां लेकर आ रहा है ताकि आप शादी कर सको, दैट्स क्रेजी। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इंटरनेट पर जाती हूँ, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ और मुझे बड़ी दिलचस्प दिलचस्प चीजें देखने को मिलती है। सो एक बड़ी ही दिलचस्प सी स्टोरी किस्सा जो है वो वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, और अगर कुछ इंटरनेट पर वायरल हो रहा है

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। आई होप आप उसके लिए रेडी हो। इनकेस आपको नहीं पता है हम क्या कह रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, वेल हम बात कर रहे हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड की, जहां पर हम पूरी तरह से पुराने गाने प्ले करते हैं। कोई नया गाना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने होते हैं। आपकी फरमाइशें भी होती हैं पुराने गानों से रिलेटेड ही, और किससे भी होते हैं पुराने ही, तो सब कुछ पुराना है। और यहां पर शुरुआत होगी एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, जिसका नाम है वादा करो। जी हाँ, आ गले लग जा मूवी से। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी बातें।

आपकी कोई डिमांड है तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ संगम पिक्चर का, और संगम पिक्चर कितनी बड़ी हिट हुई है इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उसमें राज कपूर थी, उसमें वैजयंती माला थी, और उसमें साथ में राजेंद्र कुमार भी थे। अब उससे कुछ वक्त पहले जब ये पिक्चर बन रही थी और इसके गाने जो है वो शूट होने वाले थे, गानों की रिकॉर्डिंग होने वाली थी, उससे कुछ वक्त पहले एक पार्टी के दौरान रफी साहब और राज कपूर के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। जी हाँ, और राज कपूर इतने ज्यादा नाराज हो गए रफी साहब से कि उन्होंने संगम पिक्चरों के जितने भी गाने वो रफी साहब से गवाने वाले थे उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं रफी साहब से अब अपनी पिक्चर के गाने नहीं गवाऊंगा और रफी साहब को मैं इससे बाहर कर रहा हूँ। जी हाँ, जब इस बात का पता राजेंद्र कुमार को चला तो राजेंद्र कुमार इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उसकी हद ही नहीं थी। जी हाँ, राजेंद्र कुमार को पता था कि उनके स्टारडम में बहुत बड़ा हिस्सा रफी साहब के गानों का भी था, रफी साहब की आवाज का भी था, और उन्हें रफी साहब की बहुत ज्यादा पसंद थी आवाज। अब ऐसे में राजेंद्र कुमार कहते हैं राज कपूर को कि आपको उन्हें वापस लेना होगा। जी हाँ, राज कपूर सामने से मना कर देते हैं कि नहीं, मैं रफी साहब को वापस नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे नाराज किया है। अब ऐसे में राजेंद्र कुमार इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने सीधा सीधा राज कपूर को कह दिया कि ठीक है, अगर रफी साहब इस पिक्चर में नहीं रहेंगे तो मैं भी इस पिक्चर को छोड़ दूंगा। अब यहां पर सिचुएशन ये थी कि राज कपूर ना सिर्फ उस पिक्चर में हीरो थे बल्कि वो उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे, तो उन्हें उस बारे में भी सोचना था। अब जब राजेंद्र कुमार जैसे बड़े सितारे ने मूवी को छोड़ने के बारे में बोल दिया, उन्होंने कह दिया कि अगर रफी साहब नहीं होंगे तो मैं भी पिक्चर में काम नहीं करूंगा, तो ऐसे में पिक्चर जो है वो डब्बा बंद हो सकती थी। इसी डर से राज कपूर ने राजेंद्र कुमार की ये शर्त मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर वही हुआ। राजेंद्र कुमार पर फिल्माए जाने वाले जितने भी गाने थे उन्हें रफी साहब ने गाया, और राज कपूर की आवाज तो मुकेश हमेशा से थे ही। ऐसे में राज कपूर ने पूरी तरह से सोच लिया था कि मैं तो बायकॉट करने वाला हूं रफी साहब को, लेकिन राजेंद्र कुमार बता दिया कि रफी साहब का क्या क्या जगह थी उस फिल्म इंडस्ट्री में। लिटरली उन्होंने कह दिया कि अगर रफी साहब नहीं होंगे तो मैं भी इस पिक्चर को छोड़ दूंगा। अंततः संगम के सारे पिक्चर के गाने जो कि राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए वो रफी साहब ने गाए। जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे के साथ जब बड़े बड़े सितारे जो कि आपको पर्दे पर बहुत अच्छे दिखते हैं वो हीरो की तरह एक्ट करते हैं, वो हीरो होते हैं और वो रियल लाइफ में भी कुछ वैसे ही होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, उनके फैंस को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत वक्त तक हमें यही लगता था कि जो हीरो है फिल्मों में वो हीरो ही होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जो कि लिटरली वैसे नहीं थे, मतलब वो पर्दे पे कुछ और होते हैं, रियल लाइफ में कुछ और होते हैं, और ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जो हीरो रियल लाइफ में तो हीरो है लेकिन रियल लाइफ में भी हीरो कहने लायक है। जी हाँ, ये किस्सा शेयर किया गया है जावेद अख्तर साहब के द्वारा। जी हाँ, उन्हीं की जुबानी जो है ये हम सबको सुनने को मिला है। जावेद अख्तर बताते हैं 67 का वक्त था और धर्मेंद्र के साथ वो एक पिक्चर पर काम कर रहे थे, शूटिंग हो रही थी और उस वक्त वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे और मतलब वो राइटर पूरी तरह से बने नहीं थे, उनका वो स्टार्टिंग वाला फेज था, 21-22 साल के वो रहे होंगे। जावेद अख्तर कहते हैं कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि धर्म जी से मैंने कुछ बात की और उस दौरान वो थोड़ी चिड़के। जावेद अख्तर बताते हैं कि धर्म जी को मुझे कुछ पेजेस देने थे जिसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और वो मुझसे मांगते हैं स्क्रिप्ट और मैं डर जाता हूँ वहां पर एकदम से, और मैं वो उन पेजेस को जो है वो अच्छे से रख कर उन्हें दे नहीं पाता, मतलब सीक्वेंस में मैं नहीं दे पाता, तो धर्म जी मुझे गुस्सा करते हैं कि क्या कर रहे हो, ढंग से दो। जी हाँ, अब ऐसे में जावेद अख्तर साहब फिर से डर जाते हैं, वो फिर से अपने पन्नों को जो है वो समेटने की कोशिश करते हैं, ठीक से उसे सीक्वेंस में लाने की कोशिश करते हैं और वो धर्म जी को वो दे देते हैं। धर्म जी अपनी वैनिटी में चले जाते हैं और फिर धर्म जी का असिस्टेंट जो है वो जावेद अख्तर साहब के पास आता है और कहता है कि जावेद साहब आपको धर्म जी बुला रहे हैं। जी हाँ, जावेद साहब फिर से डर जाते हैं कि अब फिर से मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, एक गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र थी उस वक्त जावेद अख्तर साहब की और बहुत स्टार्टिंग का फेज था उनके करियर का। जब वो जाते हैं तो धर्म जी उनको कहते हैं कि सॉरी जावेद, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज से ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे दर्द होता है और उस वजह से मैं चिड़चिड़ा हो गया था, मैं अभी तक यही सोच रहा था इतनी देर से कि मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात करी, मैं करना नहीं चाहता था, बस वो कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से वो चिड़चिड़ापन मेरे में आ गया और मैंने तुमसे वैसे बात करी, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं ऐसे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी ऐसे। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि ये दिखाता है कि वो कोई भी इंसान उस लेवल पे होता जिस लेवल पर वो थे, जिस सक्सेस को वो देख रहे थे, जिस सक्सेस की नैया में वो झूम रहे थे, कोई भी और होता तो शायद उसको याद भी नहीं होता कि मैंने किसी से ऐसे बात की है, किसी असिस्टेंट डायरेक्टर या राइटर से किसी ऐसे से बात की है और वो भी ऐसे तरीके से बात की है, उसको याद भी नहीं होता। लेकिन धर्म जी को देखो, धर्म जी ने अगर मुझसे थोड़े अजीब तरीके से बात की, थोड़े गलत तरीके से बात की तो उन्हें उस चीज का बुरा लगा, अदरवाइज जिस लेवल पे वो थे वो भूल सकते थे उस बात को। यही दिखाता है उनकी रॉयल्टी, वो जो जिंदा दिली थी उनमें, वो जो जबरदस्त उनकी शख्सियत थी, वो डाउन टू अर्थ पन उनमें था, अदरवाइज उस लेवल पे ये सब होना बहुत ही मुश्किल बात है। बहुत सारे लोग सक्सेस में, कामयाबी में अपने आप को भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने आप को ना भूलना कामयाबी में, वही दिखाता है कि आप किस तरह के शख्स हो। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में मल्टी कल्चरल कम्युनिटी का सम्मान। ब्रिस्बेन शहर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों और कम्युनिटी ग्रुप्स के योगदान को सराहने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट चेंज समिट पर ध्यान। जी हां, फिजी में होने वाले पैसिफिक क्लाइमेट सम्मेलन से पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर पर्यावरण नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरण मंत्री क्रिस बोवेन ने क्षेत्र की सुरक्षा पर जोर दिया है। वहीं बैकपैकर वीजा पर विवाद। ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी पार्टी ने सरकार की वीजा नीति की आलोचना की है। उनका कहना है कि बैकपैकर वीजा में कटौती से वर्कफोर्स पर असर पड़ रहा है। इसी के साथ सिडनी रूटर्स के स्टार्स ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल। सिडनी रूटर्स के तीन बड़े खिलाड़ियों जेम्स टेडेस्को, सेम वॉकर और लिंडसे कॉलिंस को वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई रग्बी टीम में चुना गया है। वहीं ब्रिस्बेन वेस्ट से लापता महिला की तलाश। ब्रिस्बेन के करीना इलाके से एक महिला के लापता होने के बाद पुलिस ने जनता से जानकारी जुटाने की अपील की है। वहीं लाउड वुमेन फेस्ट 2026 की घोषणा। ऑस्ट्रेलिया के चर्चित लाउड वुमेन फेस्ट 2026 के नए लाइनअप का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई नए स्थानीय कलाकार शामिल होंगे। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले चुनावी सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। वहीं राहुल गांधी का सत्याग्रह डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सत्याग्रह लॉन्च किया है। इसके जरिए आम नागरिक अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर डिजिटल तरीके से विरोध या याचिका दर्ज करा सकेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के लगातार संपर्क में है और बातचीत के जरिए शांति का रास्ता तलाशने में मदद कर रहा है। वहीं जीएसटी कानून में राहत की तैयारी। केंद्र सरकार जीएसटी नियमों में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। टैक्स से जुड़ी मामूली गलतियों पर गिरफ्तारी के अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ भारतीय भाषाओं के लिए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शिक्षा मंत्रालय ने देश के शास्त्रीय और पुरानी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 5 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी दी है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ब्राजील चुनाव में कड़ा मुकाबला। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती आंकड़ों में मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है और पूरी दुनिया की नजरें इन नतीजों पर टिकी हुई हैं। वहीं ब्रिटेन की ग्रीन पार्टी का बड़ा फैसला। ब्रिटेन की ग्रीन पार्टी ने अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस में एक नया प्रस्ताव पास किया है। पार्टी ने जॉयनिज्म को नस्लवाद के रूप में वर्गीकृत करने के पक्ष में वोट दिया है। वहीं अमेरिका ने ब्रिटेन बेस से हटाए B-1 बॉम्बर्स। अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस पर तैनात अपने B-1 बॉम्बर अप विमानों को वापस अमेरिका की होम लोकेशन पर भेज दिया है। वहीं फ्लाई दुबई घटना पर सुरक्षा जांच। फ्लाई दुबई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग और कॉकपिट से जुड़े संदिग्ध घटनाक्रम के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पायलट और क्रू की सुरक्षा हिस्ट्री की जांच में जुट गई हैं। वहीं साइबेरिया लैब में प्लेग का अलर्ट। साइबेरिया की एक रिसर्च लैब में काम करने वाले वर्कर की संदिग्ध प्लेग से मौत के बाद हड़कंप मच गया है। इसके बाद सुरक्षा उपायों के तौर पर लगभग 200 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं स्पेन में घर की कीमतों को लेकर प्रदर्शन। स्पेन के प्रमुख शहरों में बढ़ते मकान किराए और प्रॉपर्टी के दामों को लेकर आम जनता सड़कों पर उतर आई है। लोग सरकार से किफायती घर मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम 2026 का समापन जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियन गेम्स का समापन हो गया है। भारत ने 21 गोल्ड 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज समेत कुल 85 यानी 85 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड। एशियन गेम्स के T20 क्रिकेट फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं मेंस हॉकी में भारत का कब्जा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल रिटेन कर लिया है। वहीं नेशंस लीग में पुर्तगाल की जीत। रोनाल्डो की गैर मौजूदगी के बावजूद पुर्तगाल की टीम ने नॉर्वे को हराकर नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं फिलीपींस का रिकॉर्ड प्रदर्शन। एशियन गेम्स में फिलीपींस ने इस बार जिम्नास्टिक और पोल वॉल्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 29 मेडल जीते। ये पिछले 6 दशकों में उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready for the

0: ai, suco, suco!
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.01 ते चार छे संदेश अलग दे नाल तुसी पाणे होए। देखो वड्डे वड्डे एक्टर्स ते सेलिब्रिटीज ने ना एक समय ते दे बाद खुद नू नवा लुक देण दे लई वेट लूज कीता, पर जरूरत तो ज्यादा पतला हो जाण दी वजह नाल कईआं नू तां तारीफां तो ज्यादा ना ट्रोलिंग दा सामना करना पिया सी। उन्हां बारे ही मैं सोचा कि क्यों ना गल करा, क्योंकि अजकल बहुत ज्यादा क्रेज वध चुकिया है लोकां दे विच पतले होण दा। हर कोई चाहुंदा है कि मैं पतला होवां, बहुत पतला होवां। बहुत पतला होण दे चक्कर दे विच कई कई स्केलेटन हो जांदे ने, कई वधिया लगदे ने, पर कईआं नूं मतलब ट्रोलिंग दा शिकार होना पैंदा। तां मैं अज उन्हां ही एक्टर्स बारे दसूंगी जो ज्यादा पतले हो गए सी ते उन्हां नूं ट्रोल कीता गया सी उन्हां दे उही पतले लुक करके।

0: बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोने वन सर वन एम ते जी आप चे संदेश अलग दिन आज बने हुए। देखो एक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान दे ड्रास्टिक वेट लॉस दियां तस्वीर ते वीडियोस ना सोशल मीडिया ते वायरल हो गया ने। पहला जिथे काफी बल्कि मस्कुलर लुक विच नजर आते उथे हुण सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक ले लिया हैगा है ते मसल्स भी काफी लूज हो गए ने। हालांकि सोहेल खान दे इस नवे लुक ते तरीफा घट ते उन्हां नूं ट्रोलिंग ज्यादा चलनी पई हैगी है। सोहेल खान दा जदो अलायंस विच आए ना शो दे विच तां उस तों बाद इक तम बहुत ज्यादा सुक गए। कंपैरिजन वीडियोस बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ते छा गए कि पहला की सी ते हुण की बन गए हैगे ने। तां उस तों बाद उन्हां नूं काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। जिवें मैं तुहानूं पहला दस्सिया सी ना कि बहुत सारे एक्टर्स हैगे ने तां उसे तरह दे नाल सोहेल खान कल्ले एक्टर नहीं हैगे जिन्हां ने वजन घट करके ट्रोलिंग जिन्हां ने चली हैगी है। बहुत सारे हैगे ने उन्हां बारे दस्सदे आं तुहानूं एक एक करके। पहला सुनो एक गीत।

0: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: सांसों की माला पे समरू में।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: एनर्जी वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जिहड़ा नाम हैगा वह है राम कपूर का। टीवी की दुनिया विच कामयाबी के झंडे गड्ढण दे नाल नाल राम कपूर ने फिल्मां विच भी खूब नाम कमाया हैगा। राम कपूर ने हालांकि इस पूरे समय के दौरान अपना बॉडी वेट लगभग सेम रखा। उन्हें दी पहचान इसे लुक दे नाल बन चुकी सी, पर अचानक जद उन्होंने वजन घटाया तो उन्होंने वजन तो घट गया, नाल ही चेहरा भी काफी अलग दिखने लग पिया। लोग उन्होंने इस नवे लुक दे नाल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ते काफी ज्यादा ट्रोल किया। हाल फिलहाल दे विच लॉकअप 2 दे विच नजर आए सी, जिथे उन्होंने काफी ज्यादा प्यार मिले।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते चार छे संदेश अलग दिन आज पड़े हुए। अगला नाम है जी करण जौहर दा। बॉलीवुड दी दुनिया वे दा एक अजिहा नाम जिन्होंने ना सिर्फ सानू बहुत सारिया यादगार फिल्मा दित्तिया बल्कि हिंदी सिनेमा नूं कितों तो कितों पहुंचाया। करण जौहर नूं असीं शुरू तो एक खास लुक कैरी करते देखिया, पर फिर जद उन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा घटाया ना तो उन्होंने ओजिम्स ते मुंजारो वर्गे ड्रग्स लैण दा आरोप लग्या। करण जौहर फंकी लुक दे नाल नाल बहुत पतले दुबले लुक दे लई काफी ज्यादा ट्रोल होए सी। खैर करण जौहर ट्रोल अक्सर हुंदे रहिंदे ने पर लुक नूं लैके पहली बारी होए सी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well-known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: House. मैं तुहानूं कहा ना कि जरूर जरूर जरूर जुड़ो साडे नाल, तां जुड़ो साडे नाल। रेडियो ब्रिसोनी 107.1 FM फेसबुक पेज है जिते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। ज़रिए जिहड़ा भी अपनाओ साडे नाल गल्लां बातां जरूर करदे रहो। साडा मकसद हैगा तुहाडे नाल जुड़न दा। तां जिवें तुहानूं पहलां कहा ना कि दसो कि किहड़े एक्टर नूं ट्रोलिंग दा शिकार नहीं होना चाहीदा सी, कि उसदी ट्रांसफॉर्मेशन वधिया सी, ते किहड़ी एक्ट्रेस तुहानूं लगदा कि उसनूं स्लिम होण दी लोड़ नहीं, बल्कि ही ज्यादा वधिया लगदी सी। जरूर दसो, जुड़दे रहो साडे नाल। ते मैं तां इही वादा करके चली आं जी कि कल करदे मुलाकात। रुख अपना ख्याल, सत श्री अकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
2: Yo, I'm gonna smash your boy.
3: Kid.
2: Tomorrow night, I'm gonna smash your boy.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

96,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है।

सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: लगता रूम में रह गया।

जीवन बहुत अनमोल है ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बदलता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो। तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी।

पर फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर सुबह के हमारे आत्मा को जगाते और मन को शुद्ध करते सफर जीवन आधार में। और इस सफर में आपका साथ कुछ ऐसे गानों के साथ आज मैं दे रही हूँ जो गाने मन को, तन को और बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं। आपको किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ते, आपको इंसानियत से जोड़ते हैं और इंसान बनाते हैं। आपको जीने की सही वजह बताते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। अभी एक ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे हमारे जीवन आधार के सफर में आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर श्रोताओं, आप कदम उठाने से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें ये सोचकर मन अक्सर घबरा जाता है। पता नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें वो ऊपर वाला आपका साथ देगा या नहीं, पता नहीं आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा नहीं, या आपने सही चाहा है या गलत चाहा है। अक्सर मन इस बात के बीच में विचलित होता रहता है। लेकिन अगर एक बार ठान लिया है कि ये करना ही करना है, अगर एक बार मन ने तय कर लिया है कि ये राह अपनानी ही अपनानी है, तो भला मन को विचलित क्यों होने देना। फिर तो जो ठान लिया सो ठान लिया, जब कदम उठा लिया तो रास्ते की परवाह क्यों करनी। फिर तो आपका जो पैशन है, आपकी जो चाहत है, वो आपको आपके लक्ष्य तक ले ही जाएगी, है ना। तो चलिए इसी बात पर आपके लक्ष्य के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर है क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

भाग्य। कहते हैं जो भाग्य में एक दफा लिख जाए फिर वो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो शायद भाग्य का लिखा भी बदल सकती है। यूं ही नहीं कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले उस शक्ति का, उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि को चला रहा है। आप किसी भी पद पर हों, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई है जो इस सृष्टि का नायक है और हम सबकी बागडोर उसने अपने हाथ में थाम रखी है और वही भाग्य का रचयिता भी है। तो अगर वो आपसे प्रसन्न है तो भाग्य लिखा हुआ बदल भी सकता है। बस उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। और एक बार वो आपको मिल गया फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार।

बताने के बाद एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, ये है सफर जीवन आधार का। जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, जीने की वजह भी देता है और जीने की वजह छीनता भी है। कभी कभी जीवन में वो दौर आता है जो शायद आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का सबसे बुरा दौर है, लेकिन ये वो दौर होता है जब आपको जीवन में सबसे अच्छा मिलने वाला होता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए ना सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको समझ नहीं आता है। लेकिन उसकी मर्जी अगर हम और आप समझ लेंगे तो फिर हम और आप भी परमात्मा नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो क्या चाहता है, क्या सोचता है वो हमें समझ में नहीं आता, और फिर वो हमें कुछ ऐसा देता है कि हमें लगता है कि शायद हम तो इस लायक थे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत बुरे दौर से गुजरना होता है जब कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला होता है। आइए उसी दौर के नाम जो हमें हिला कर रख देता है, हमें पूरी तरह से बेबस कर देता है, उस दौर के नाम सुनेंगे अभी अगला गीत, क्योंकि ये वो दौर भी है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ।

सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और हमारा आपका ये जो साथ है जीवन आधार पर, ये हर साथ के साथ, हर दिन के साथ और भी मजबूत हो रहा है और जीवन की सच्चाई को, जीवन के आधार को, जीवन के बेस को हम हर रोज सुबह मिलकर साथ में ढूंढते हैं। आज भी एक यही कोशिश इस सफर में और अभी इस अगले गाने के साथ इस कोशिश को अंजाम देंगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर मेरे साथ जीवन आधार।

दोस्तों कहते हैं कि दुश्मनों से हमेशा बच के रहिए, आपने भी जरूर सुना होगा। लेकिन देखा जाए तो दुश्मन या जो लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं वो होते कौन है? वो हमारे अपने ही होते हैं। देखिए, बाहर वालों को नहीं पता कि आपके खिलाफ साजिश क्यों करनी है, उन्हें क्या मिलने वाला है। कोई चक्रव्यूह रचना करके, कोई साजिश करके, उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर किसी को कुछ मिलना है तो आपके अपनों को ही। और इसीलिए कहते हैं कि कितने भी आप किसी रिश्ते को लेकर इमोशनल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी एक आंख हमेशा खुली रखिए कि उस रिश्ते से भी अगर धोखा मिला तो आप क्या करेंगे। कभी कभी बहुत करीबी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। इसलिए एक जितना भी भरोसा किसी रिश्ते पर हो, एक जो है वो निगाह उस रिश्ते पर ऐसी जरूर रखिए जो उस रिश्ते की कमियों को आपको दिखा पाए। नाइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

तो श्रोताओं, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। आपके अपने दोस्त आज ही चांदनी चैन के साथ मैं हूं आपकी मॉर्निंग कंपेनियन। और अगले एक घंटे में दोस्तों मिलेंगे न्यूज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, थोड़ी गोसिप, थोड़ी मस्ती और वो छोटी छोटी बातें जो सुबह को जनरली ना बेटर बना देती है। और दोस्तों आपके मूड को रिफ्रेश और फ्रेश और एनर्जेटिक करने के लिए आपको सुनाते हैं ये सॉन्ग ऑन योर रेडियो ब्रिजवाणी।

वेलकम बैक जी, रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चाने का सफर। और आशा करती हूँ ये सॉन्ग आप सभी को बेहतरीन लगा होगा और आपका मंडे बहुत अच्छे से बीता होगा, क्योंकि आज है ट्यूसडे। क्योंकि मंडे अगर अच्छा जाएगा ना, तभी ट्यूसडे को भी हम और बेटर बना सकते हैं। हमेशा आपको कहती हूँ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्स रखें और आसपास अपना एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रखें। अपने साथ उन लोगों से बात करें, उन लोगों को रखें जो पॉजिटिव हो, जो आपको अच्छी चीज़ सिखाते हैं या आप अच्छी चीज़ सीखते हैं या आप उनको सिखाते हैं। कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ ना रहें, क्योंकि हम जब नेगेटिव लोगों से मिलते हैं या नेगेटिविटी अपने आसपास देखते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वो भी उस रास्ते चल पड़ता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। जहाँ पर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी लगे, वहाँ से हट जाइए, अपने मन को शांत रखें, क्योंकि पॉजिटिविटी ही हमारे दिन की शुरुआत करती है और पूरा निर्भर करती है कि आज हमारा दिन कैसे बीतेगा। सो आइए इंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रिस्वानी में। तो आइए सबसे पहले बात ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की करते हैं। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का जो ऑफिशियल एम्बलम है अब ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। इसका जो सेंटरपीस एक पिंक कोकाटू है जो कि कैंगरू और कोला को पीछे छोड़कर कोकाटू ने बाजी मारी है। तो एम्बलम में क्वींसलैंड और ओलंपिक फ्लेम से इंस्पायर्ड डिजाइन एलिमेंट्स भी है। और वहीं पर हम वेदर लवर्स के लिए भी ध्यान में बात रखेंगे क्योंकि दोस्तों ट्यूसडे यानी कि आज जो है ब्रिस्बेन में पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो है शावर्स की चांसेस और थंडर स्टॉर्म की पॉसिबिलिटी है। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के मुताबिक टेम्परेचर अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और कुछ थंडर स्टॉर्म्स जो सीवियर है वो भी हो सकते हैं। तो अम्ब्रेला भाई गाड़ी में रखना ना भूलिए। ब्रिस्बेन का वेदर कब मूड बदल जाए पता नहीं। आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इस सॉन्ग के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए रेडियो ब्रिस्वानी में अब बात करते हैं इंडिया न्यूज की। तो दोस्तों, इंडिया से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी हैं। रेलवे के एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव की बात करें तो एआई बेस्ड प्लान बी अलर्ट्स और एडिशनल सेफ्टी जो है वो मेजर्स की हेल्प से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच 255 एलिफेंट्स को ट्रेन कॉलिसेंस से बचाने की इन्फॉर्मेशन दी है। और ट्रैवल करने वालों के लिए भी एक अपडेट है दोस्तों, इंडिगो ने 6 अक्टूबर से न्यू बुकिंग्स पर फ्यूल चार्जेस रिवाइज किए हैं राइजिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइसेस के बैकग्राउंड में दोस्तों। तो फ्लाइट बुकिंग करने से पहले फेयर ब्रेकअप चेक जरूर कर लेना। आइए इसी के साथ हम सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। अब आ गया है वो सेगमेंट जिसका वेट होता है, जी हाँ, फिल्मी तड़का। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस की दृश्यम 3। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में टॉम क्रूज की जो जिगर को बीट करके सेकंड पोजीशन तक पहुंच गई है। अरिजीत सिंह की बात करें तो दोस्तों अरिजीत सिंह फैंस के लिए भी एक्साइटिंग न्यूज है। अरिजीत सिंह इंडिया टूर अनाउंस कर चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उनका पहला इंडिया टूर जो है वो होगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 9 सिटीज में परफॉर्म करेंगे। मतलब कि हेडफोन्स रेडी रखिए, अरिजीत सीजन आ रहा है। हाँ जी, तो अरिजीत सिंह क्या करेंगे भाई, वो तो अब सुनने के बाद ही पता चलेगा। आप सभी को अपडेट मिलती रहेगी जाने से, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

चलिए भाई थोड़ा सा बॉलीवुड गॉसिप का तड़का भी लगा ही देते हैं। जानवी कपूर रिसेंटली पेरिस फैशन वीक में अपनी साड़ी लुक की जो वजह है उससे हेडलाइंस में रही है। इंडियन फैशन को इंटरनेशनल स्टेज पर कैरी करने का उनका जो लुक है भाई वो सोशल मीडिया पर काफी डिस्कस हुआ है। वहीं पर अगर संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त के रिसेंट पीस इन इंडिया कॉमेंट को लेकर भी कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। शेखर सुमन ने संजय दत्त का डिफेंस करते हुए कहा कि एक्टर अपने कंट्री से प्यार करते हैं। अब सवाल आपसे ये है दोस्तों कि सेलिब्रिटी की कोई कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट आपको जेन्युइनली इफेक्ट करती है या आप कहते हो भाई सेलिब्रिटी है बोलने दो, जरूर बताइएगा। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। हम आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लंदन से अमेरिका जा रही फ्लाइट BA295 में इमरजेंसी, अचानक 9000 फीट नीचे आया विमान। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 ने आयरलैंड के आसमान से ऊपर उड़ान भरते समय इमरजेंसी घोषित कर दी, क्योंकि विमान अपनी सामान्य ऊंचाई से तेजी से नीचे आने लगा। बोइंग 777 लंदन हीथ्रो से शिकागो ओहेयर जा रहा था, जहां आयरलैंड के ऊपर से गुजरते हुए ये लगभग 37,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आकर करीब 9,000 फीट पर आ गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से विमान की ऊंचाई में आए इस बदलाव का पता लगा। पाकिस्तान में फिर बनी टकराव की स्थिति, सड़कों पर उतरे इमरान खान के समर्थक। पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। अपने नेता इमरान खान की रिहाई के लिए उनके हजारों समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद की ओर कूच किया। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के बीच चल रही बातचीत पूरी तरह नाकाम रही, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। मेडिसिन के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबल। रोशनी की मदद से दिमाग के न्यूरॉन्स नियंत्रित करने की खोजी तकनीक। मेडिसिन का नोबल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये तीनों वैज्ञानिक दिमाग की अलग अलग नर्व सेल्स की एक्टिविटी को चालू या बंद करने के नर्व सिस्टम पर काम कर रहे थे। 2026 का मेडिसिन नोबल जर्मनी के पीटर हेगेबैन और जॉर्ज नागेल और अमेरिका के कार्ल डाइसोरोथ को दिया गया है। इन तीनों ने लाइट गेटेड ऑयल चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स पर रिसर्च की है। वो जर्मनी और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं। अब दिमाग से डिलीट होगी दर्दनाक याद, बोस्टन यूनिवर्सिटी का बड़ा दावा। इनग्राम टेक्निक से यादों को मिटाना होगा संभव। आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि आप दर्द भरी यादों को मिटा सकें, क्योंकि विज्ञान अब सिर्फ यादों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें बदलने और दबाने और दोबारा एक्टिव करने की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। अमेरिका की प्रसिद्ध बोस्टन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ब्रेन एंड मेमोरी के एसोसिएट प्रोफेसर स्टीव रामिरेज ने अपनी किताब हाउ टू चेंज अ मेमोरी और हालिया शोधों के जरिए नया तूफान ला दिया है। ये किताब रॉयल सोसाइटी त्रिवेदी साइंस बुक प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। इसके अनुसार याद को मिटाना, दोबारा जिंदा करना या नया प्रारूप देना अब संभव है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। यूपी चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में होगा बड़ा फेरबदल। पिछले 4 महीनों में कम हो चुके 5 मंत्री। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। दोनों राज्यसभा का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जाहिर है इसके बाद वो मंत्रिमंडल में नहीं रह पाएंगे। अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
7: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 04159526600, 04159526600।
8: Okay, now with the weather like this, I thought of playing this song, okay?
7: Which one is it? All right. Oh, yeah.

0: और अगला जो गाना मैं बजाने जा रहा हूं दोस्तों, और अमिता को बिल्कुल मालूम नहीं है कौन सा गीत है, आई इवन हम्ड इट एंड यू कुडंट कैच इट ऑन एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स यू सेड आफ्टर आई हम्ड इट, बट दिस इज अ सॉन्ग आई यूज्ड टू प्ले ऑल द टाइम, दैट मींस यू वर नॉट लिसनिंग टू
1: मी. नो हैंग ऑन, आई सेड मे बी व्हेन यू प्ले द सॉन्ग एंड विद ऑल द म्यूजिक एटसेट्रा एटसेट्रा,
0: ओह यू डिडंट से विद ऑल द म्यूजिक
1: एंड मे रिकॉग्नाइज द सॉन्ग.
0: That means I was out of, way out of tune.
1: Way
0: right?
1: out of tune.
0: Was I?
1: Out of whack completely.
0: Oh, come on. Really?
1: I think so. Let's hear it.
0: Oh, man, I lost it. Man.
1: Here we go now.
0: Oh, what happened to it? Hold on. No, I haven't lost it. It's here. You ready?
1: I'm ready.
0: Okay, here we go.

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: कभी नया तो कभी पुराना दोस्तों, मिलाजुला कुछ गाना हम आपके लिए लेकर आते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको गीत नहीं पसंद आ रहा है तो क्या करना चाहिए आपको?
1: फरमाइश।
0: नंबर है
1: 04300317 01
0: या
1: 07 3279 1701।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622, or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au, और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
9: हाँ कोकिला जी नमस्कार
10: जी। भाई जी, आप लोग के प्रोग्राम, सॉरी हम लोग नहीं रिंग कर रहे, लेकिन आप लोग के प्रोग्राम तो इतनी बढ़िया चल रही है, तो बोली नहीं डिस्टर्ब करो आप लोग के।
9: मेरा आई डोंट नो, कुछ एक प्रोग्राम है
10: जो,
9: अच्छा
10: तब फिर कोई दिन।
9: अच्छा ओके, थैंक यू। अच्छा ओके, बाय
10: थैंक यू भैया,
9: बाय बाय। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे फोन लाइन पर, मेरे ख्याल से कुछ सर्वेलेंस ज्यादा हो गया। एनीवे दोस्तों, कहते हैं कि कल की चिंता को आज की शांति कभी मत चुराने दीजिए। आज एक छोटा सा पॉजिटिव कदम उठाइए, किसी एक जरूरतमंद इंसान की मदद कीजिए और अपनी जिंदगी की किसी एक ब्लेसिंग के लिए दिल से शुक्रगुजार कीजिए, ठीक है? क्योंकि कभी कभी उम्मीद के एक किरण, मदद के एक हाथ और ग्रेटिट्यूड का एक पल ही पूरे दिन को मीनिंगफुल बना देता है कि नहीं? तो चले, जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और आर यू प्लेइंग समथिंग?
11: No, I thought you had a song you wanted to play.
9: I don't think it'll be appropriate now.
11: Oh, sorry.
9: No, it's all right.
11: Okay.
9: We are in different mood now, aren't we?
11: Okay.
9: Oh, I can play. Okay, I'll play this old song then. I'll play something else that will fit into this mood now, okay?
11: Mm-hmm.
9: All right, Radio Biswani, aap sun rahe hain dosto, aapki apni pehchan aur jo geet bajane ja raha hoon main.

उम्मीद है गाना आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए इस समय 25 मिनट रह गया है, 26 मिनट रह गया है, माफ करना, 9 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ। उसके बाद सताक्षी हो, फिर 11 बजे से संदेश के साथ सुनेंगे पंजाबी प्रोग्राम, फिर 3 बजे से निविया के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है। रेडियो मधुबनी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान। और चले सुनते हैं अगला गीत। सॉरी कोकिला जी, फोन वॉज नॉट हेल्पिंग अस टुडे।

0: ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और उम्मीद है आज के जो गीत आपको पसंद आए होंगे। और अगर मेरा फ़ोन आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं दोस्तों, तो अभी मैं इसको कुछ देख रहा हूँ क्यों ऐसे होता है कि कुछ कॉल्स आते हैं और कुछ नहीं आ पाते हैं।
1: Have you managed to work anything out?
0: नॉट येट, आई एम स्टिल ट्राइंग। इट्स नॉट गुड है। चलो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों।

और हाँ दोस्तों, अभी जिस इस गीत को आपने सुना, अ ब्रिलियंट सिंगर, बहुत प्यारा सिंगर है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।

और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ कोई जापान से मेरा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम सुन रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम। ओके देखिए, एक जल्दी से बता दूं, एन ऑस्ट्रेलियन सोल्जर हैज डाइड एंड सेवरल अदर्स हैव बीन इंजर्ड ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन द नॉर्दर्न टेरिटरी। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कन्फर्म्ड द ऑस्ट्रेलियन आर्मी सोल्जर डाइड एट द माउंट बंडी ट्रेनिंग एरिया ऑन मंडे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं एंड चलो इस गाना को सुनते हैं दोस्तों। ओके

0: जी हाँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, लेकिन कुछ देर में हम पास तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप रेडियो बिजवानी के पास रहेंगे। ठीक है, रेडियो बिजवानी आप सुनते रहे दोस्तों, और आपको प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम है आपको 24/7 हम लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो चले आखिरी गीत है।
1: ओके,
0: आखिरी गीत है दोस्तों, और इसी गीत के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं, कल मिलेंगे जरूर।
1: Yep.
0: और देखते हैं कल क्या लेकर आते हैं।
1: जी, नमस्ते एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल डे, वी सी यू ऑल टुमारो,
0: सेफ डे।

कहते हैं नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। इस नई मॉर्निंग नई शुरुआत के साथ मैं सताक्षी एक बार फिर से हूँ आपके साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में रेडियो ट्रिस्वानी 1701 एम पर। तो थोड़ी देर जरा अपनी नींद को खोलने की कोशिश करते हैं, जरा अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं और अपने इस साथ को मॉर्निंग के साथ जरा और खूबसूरत बनाते हैं। सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ रेडियो ट्रिस्वानी पर।

वेलकम बैक. इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीजू प्रिस्वानी 1701 एम पर. और इसके पहले कि हम सफर की शुरुआत करें, जरा उनसे जुड़ लेते हैं जिनके लिए ये पल खास है. सो भाई, आज इनका भी हैप्पी बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, या फिर आज के दिन कुछ खास और स्पेशल होने वाला है, आप सभी के लिए ये दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त हो. इसी विश के साथ चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको एक और ट्रैक के साथ. स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी, मुझे इंजॉय करते रहिए. इट हैपेंस में

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। कभी सोचा है आपने कि हम सब किस दौड़ में भाग रहे हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सिर्फ समय को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर सच तो ये है कि समय अपनी रफ्तार अपनी स्पीड से चलता रहा है और चलता रहेगा, छूटते हम खुद चले जाते हैं। इसीलिए किसी इंटेलिजेंट इंसान ने क्या खूब कहा था कि अगर आप जिंदगी में ठहर कर खुशबू सूंघ नहीं पाते, अपनी जिंदगी को स्मेल नहीं कर पाते, तो फिर आप जी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वक्त बिता रहे हैं। तो कभी कॉफी की चुस्की लेते हुए खिड़की से बाहर देखना, किसी अजनबी की मुस्कान पर मुस्कुरा देना, यही सब तो जिंदगी को जीना है। तो चलिए इसे जिंदगी के नाम करते हैं ये अगला ट्रैक। हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम।

कल शाम ना मैं एक छोटे बच्चे को देख रही थी, उसका शायद खिलौना टूट गया था। वो 2 मिनट रोया और फिर उसी टूटे हुए खिलौनों से एक नया खेल खेलने लगा। हम बड़े होकर ये हुनर भूल जाते हैं दोस्तों। जब जिंदगी हमारी किसी योजना को तोड़ती है, हमारे किसी प्लान को खराब करती है, तो हम पर शिकायत में उलझ जाते हैं, जबकि हमें करना ये है कि उसी टूटे टुकड़े से कुछ नया कैसे बनाया जाए, कुछ कैसे नया क्रिएट किया जाए, ये हुनर आजमाना है। जिंदगी हर मोड़ पर सिखाती है, बस हमारी सीखने की नियत होनी चाहिए। और उसी जिंदगी को आइए सेलिब्रेट करते हैं अगले ट्रैक में। अभी एंजॉय करते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: गानों की हैट्रिक. देखिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं गानों की हैट्रिक लगाने के लिए. भाई लगाते होंगे हमारे क्रिकेटर्स चौवे और छक्के, हमारे लिए तो ये हैट्रिक ही काफी है. हमें यहाँ पर सुनने को मिलते हैं 3 गाने, वो भी बैक टू बैक. तो चलिए बिना देर किए गानों की हैट्रिक के इस पहले ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हैं. स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस मेरे साथ.

गानों की हैट्रिक। जी हाँ, गानों की हैट्रिक के इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी पर, और गानों की हैट्रिक के इस लास्ट ट्रैक को एंजॉय कीजिए और इसके उस पार होंगी इट हैपेंस में आपके साथ एक बार फिर से ढेरों ढेर बातें।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वेलकम बैक। छपन सुन रहे हैं आप सोदाक्षी के साथ इस सुबह, और अपनी सुबह को खास और अमेजिंग बना रहे हैं आप मेरे साथ मिलकर। वैसे रिश्ते भी ना दोस्तों किसी कांच के आईने की तरह होते हैं। अगर आप आईने के सामने मुस्कुराएंगे तो जवाब में भी मुस्कुराहट ही मिलेगी। पर कभी कभी हम दूसरों से वो उम्मीदें करने लगते हैं ना जो हमने खुद से कभी पूरी ही नहीं की। लेकिन जब नजरिया बदलता है तो समझ में आता है कि लोग गलत नहीं होते, बस वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते। किसी को वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना जैसा वो है, शायद यही तो सबसे बड़ा प्यार है। और इसी प्यार को आइए सेलिब्रेट करते हैं अगले ट्रैक के साथ, क्योंकि रिश्तों का मुकाबला करने से वो खास नहीं बनते, उन्हें महसूस करने से वो खास बनते हैं।

मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। इस मॉर्निंग आपकी मॉर्निंग को हम बना रहे हैं आपके लिए खास और बेहतरीन। अच्छा, कभी सोचा है कि लाइफ में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी चीज को पकड़ के रखना या उसे जाने देना। जब आप किसी गर्म कोयले को हाथ में पकड़े रहते हैं तो जलता कौन है, सामने वाला या आप? नाराजगी, शिकायतें और पुरानी कड़वी यादें उस गर्म कोयले की तरह ही होती हैं। जब आप लेट गो यानी छोड़ना सीख जाते हैं तो आप सामने वाले पर एहसान नहीं करते, आप खुद को आजाद कर देते हैं। तो आज उन पुरानी शिकायतों की गांठ खोल दीजिए, आप देखेंगे कि आपका मन कितना हल्का हो जाता है।

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।